0: Your radio, your music. FM 102.7 East FM.
1: कनाडा सरकार सरहदी सुरक्षा लई सख्त कदम चुक रही है। ड्रग्स ते बंदूकां दी तस्करी नूं रोकिया जा रहा है, जिस नाल तुसी भाईचारे विच सुरक्षित रहो। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कनाडा सरकार वल्लों इक सुनेहा।